सुप्रभात, ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, सक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की तिथि 9, तदनुसार मई 30 ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी

प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए। पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगी। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे अनुराधा माठे और श्रीकांत पारगांवकर। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम की आवाज़ों में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हम आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे आनंद मोहन पाठक के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत कलाकार होंगी करुणा कुमारी और साथी। सुबह 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें चर्चा के साथ आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता। फैशन डिजाइनर भेंटवार्ताकार होंगे विशाल गोप और उनसे बातें करेंगे आशा पिंगवा। सुबह के 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन का। सुबह 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह के 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 2:55 पर आकाशवाणी रांची से। दोपहर के 3 आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 3:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम के 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा भिंडे की खेती। उसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत प्रेम सिंह पूर्ति और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंटवार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे कुरमाली लोकगीत कलाकार होंगे। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सात रंग का। शाम के 6:30 का समय होगा आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम।

शाम के 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से ही सुनेंगे जिले में आजकल। शाम 7:15 का समय होगा श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

40 मिनट का समय होगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं सुगम संगीत आनंद मोहन पाठक के स्वर में।

0: शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत जो है आलू के बारे में, और यह अच्छी गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। ये मस्तिष्क और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। एक मध्यम आकार के आलू में शरीर की दैनिक आवश्यकता का लगभग 50% विटामिन सी और भरपूर पोटेशियम होता है। आलू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करते हैं। यह विटामिन सी और पोटेशियम का एक उत्कृष्ट और किफायती स्रोत भी है, जो मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है, और इसे खाने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होने के कारण खिलाड़ी और एथलीट अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए आलू को अपने आहार में जरूर शामिल कर सकते हैं, और ये एक ऐसी सब्जी है जिसे हम अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर हम इसे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, और गुण से तो ये भरपूर है ये, जैसा कि हमने अभी कहा, और इसको हम बहुत सारी चीज़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तरह तरह के जो है पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन भी बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके व्यंजन ज़रूर ट्राई करेंगे। और बहनों, अब बातों बातों में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। अभी के लिए दें इजाजत अपनी सखी निधि को। नमस्कार।
1: गृह लक्ष्मी।

ये वक्त है कार्यक्रम शैक्षिक प्रसारण का। आज के शैक्षिक प्रसारण में हम सुनेंगे वार्ता वायु प्रदूषण कारण प्रभाव और निवारण। वार्ताकार हैं दशरथ कुमार पांडे। प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की।

0: नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। आज इसके अंतर्गत सुनेंगे वार्ता वायु प्रदूषण कारण प्रभाव और निवारण। वार्ताकार हैं दशरथ कुमार पांडे।
1: आज हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की, एक अदृश्य दुश्मन जो आज की विकराल समस्या है। जैसा कि सर्वविदित है, हमारे शरीर के 5 तत्वों में एक वायु भी है। इस वायु का सांस द्वारा हम अपने वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और इस प्राण वायु का संचार हमारे पूरे शरीर में होता है और इसी से हमारा अस्तित्व बनता है। तो जब यह इतनी महत्वपूर्ण है तो जाहिर सी बात है कि इसे स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल निर्मल और शुद्ध होनी चाहिए। पर आज हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज विश्व स्तर पर हम इस क्रूर शब्द को बड़ी जोर शोर से सुन रहे हैं, वायु प्रदूषण की समस्या। यह एक सहज और सामान्य नहीं है, यह मानव सभ्यता के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता है। आज के शिक्षित जनमानव के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। तो क्या है यह समस्या? क्यों चिंतित है मानव समाज? हमारी सभ्यता के अस्तित्व पर क्या होगा इसका प्रभाव? आइए इस पर

0: गहराई से समझते हैं। जब धूल, गंदगी, गैस, कालिख, वायरस आदि हवा को प्रदूषित करते हैं तो यह सांस लेने के लिए अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर और विषाक्त हो जाती है। हवा में उपस्थित वायु प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों, जानवरों, वनस्पतियों और तमाम पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभावों को निर्धारित करती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो वायु प्रदूषण दो प्रकार के होते हैं। जब वायु प्रदूषक घर, कार्यालय, स्कूल आदि जैसे इंडोर स्थानों में हवा को दूषित करती है तो इस इंडोर वायु प्रदूषण कहा जाता है। यह इंडोर हवा बाहर की तुलना में कई गुना खराब हो सकती है क्योंकि वायु प्रदूषक बंद स्थानों में फंस जाते हैं और स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते हैं। एक दूसरी स्थिति तब आती है जब खतरनाक वायु प्रदूषक हमारे घर, दफ्तर के बाहर हवा को प्रदूषित करते हैं। यह प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है, जैसे जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट या मानवीय गतिविधियां जैसे कचरा आदि जलाने के कारण। वायु के प्रदूषित होने की इस प्रक्रिया को आउटडोर वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो अब हम कुछ वायु प्रदूषकों के बारे में जानेंगे जिनका सबसे अहम योगदान है वायु प्रदूषण की वृद्धि में। सल्फर डाइऑक्साइड, यह एक अत्यंत ही हानिकारक गैस है। इसका निर्माण औद्योगिक प्रक्रियाओं से होती है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने पर इसका उत्सर्जन होता है। यह मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जैसे श्वसन की समस्या, अस्थमा, फेफड़े की कार्य क्षमता में कमी, त्वचा और आँखों में जलन। इसी प्रकार नाइट्रोजन ऑक्साइड जो वाहनों के इंजन और बिजली संयंत्रों में उत्सर्जित होती है, यह स्मोग और एसिड रेन का कारण बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न जहरीली गैस है। यह प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जित नहीं होती है बल्कि नाइट्रोजन के यौगिक और वाष्पशील कार्बन के यौगिक के रूप में होती है। अमोनिया, यह मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों, उर्वरकों, पशु अपशिष्ट से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बने रसायनों का एक समूह है जिनका उपयोग मुख्य रूप से फ्रिज, एसी, एरोसोल स्प्रे में कूलेंट के रूप में किया जाता है। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली एक खतरनाक गैस है। इस प्रकार अनेकों अपशिष्ट या वायु प्रदूषक कण हमारे वायु मंडल में मिले हुए हैं। तो आइए अब हम सब समझते हैं कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से मुख्य कारण हैं। वायु प्रदूषण जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से होता है। ऐसा तब होता है जब बिजली या परिवहन के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु कोयला, तेल या गैसोलीन का दहन होता है। प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण प्रदूषकों से प्रेरित हवा में सांस लेना हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कम करता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है। बड़ी मात्रा में प्रदूषण के कण हवा में छोड़ी जाती है। वाहनों का धुआं उत्सर्जन, सड़कों पर वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बसों, कारों, ट्रकों और अन्य वाहनों का धुआं संबंधित शहरों में वायु को प्रदूषित कर रही है। कृषि से संबंधित गतिविधियां, फसल कटाई के बाद खेतों में बचे डंठल और अवशेषों को आग लगाने से भारी मात्रा में धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड और बारीक कण हवा में घुल जाते हैं। खेतों में यूरिया और नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के उपयोग से अमोनिया गैस निकलती है जो हवा में अन्य प्रदूषक के साथ मिलकर छोटे जहरीले कण बनाती है। फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव करने के दौरान ये रसायन वाष्पीकृत वायुमंडल में फैल जाते हैं और मानव स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। पशुपालन के दौरान जुगाली करने वाले जानवरों के पाचन तंत्र से मीथेन गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त पशुओं के मल मूत्र से अमोनिया और अन्य हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं। इसी प्रकार ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य डीजल चालित कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। ऐसे ही उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया, ईंधन दहन और कचरे अनुचित निष्पादन के कारण वायु प्रदूषण फैलता है। विशेषकर कारखानों और थर्मल पावर प्लांटों में कोयला, तेल और गैस जलाने से भारी मात्रा में धुआं निकलता है। आजकल सर्वत्र निर्माण कार्य काफी तेजी से हो रहे हैं। इन निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और निर्माण सामग्री के कण हवा की गुणवत्ता को खराब करते रहते हैं। माइक्रोबियल क्षय प्रक्रिया, विनिर्माण रसायन व कपड़ा उद्योग बड़ी संख्या में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, रसायन और कार्बनिक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं, जिनसे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। जीवाणु और कवक प्रकृति में जैव भू रासायनिक चक्रों में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। आसपास मौजूद इन सूक्ष्म जीवों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है जो जहरीली होती है। इस गैस में सांस लेने से इंसान की मौत भी हो जाती है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग व धूल भरी आंधियां बड़े पैमाने पर धूल, राख और जहरीली गैसें हवा में छोड़ती हैं। भूकंप, बाढ़ या तूफान जैसी आपदाओं के कारण औद्योगिक इकाइयों या भंडारण स्थलों को नुकसान पहुंचता है, जिससे खतरनाक रसायनों और गैसों का रिसाव होता है। अब हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण का प्रभाव हमारे जीवन पर और पर्यावरण पर क्या होता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की अत्यधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम के चक्र में अनिश्चितता बढ़ गई है। कारखानों और वाहनों से निकले SO2 और NO2 जैसी गैसें बादलों में मिलकर एसिड बनाती है और जब यह अम्लीय वर्षा करती है तो जंगलों, नदियों और कृषि को भारी नुकसान पहुंचता है। हवा में मौजूद प्रदूषक जैसे ओजोन पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकते हैं और उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बाधित करते हैं, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आती है। प्रदूषित हवा वन्य जीवों के लिए भी घातक है। जहरीली हवा के कारण पशु पक्षियों में श्वसन संबंधी बीमारियों और जन्मजात विकार देखे जाते हैं, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर भी कई दुष्परिणाम सामने आए हैं। हवा में मौजूद प्रदूषक हमारे वायु मार्ग को परेशान कर सकते हैं, जिससे सूजन हो सकती है। इसके साथ साथ अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी डिजीज बढ़ सकती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता कम हो सकती है, जिससे श्वसन संबंधी कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वायु प्रदूषण दिल के दौरे और स्ट्रोक के लिए प्रमुख कारक हैं। इसके कारण रक्त धमनियों में वसायुक्त पट्टिकाओं के निर्माण के कारण धमनियां संकीर्ण हो जाती है। धमनियों के इस संकुचन से दिल के दौरे व स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण ग्लूकोज के चयापचय और इंसुलिन की संवेदनशीलता को बाधित कर सकता है। इस प्रकार यह उच्च वायु प्रदूषित क्षेत्र में रहने वालों में मधुमेह विकसित होने का जोखिम बढ़ा सकता है। रक्तअल्पता होने की संभावना बढ़ जाती है। RBC की संख्या सामान्य से कम होने लगती है, जिससे उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण के कारण त्वचा के कई तरह से नुकसान हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट कर देती है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, जिनसे त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। त्वचा में जलन और सूजन की समस्या तो आम बात है। अब हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण के इस विकराल समस्या का निराकरण क्या है। निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, छोटी दूरियों के लिए पैदल चलने या साइकिल के प्रयोग का आदत डालें, बिजली बनाने के लिए अक्सर जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है जिससे प्रदूषण होता है, अतः बिजली बचाने की आदत डालें, सूखी पत्तियां, प्लास्टिक या घर के कचड़े जलाने से जहरीला धुआं निकलता है, अतः उन्हें जलाने के बजाय कंपोस्ट बनाएं, त्योहारों और शादियों में पटाखे जलाने से बचें, यह हवा में भारी मात्रा में जहरीले कण घोलते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करें, यह प्रदूषण मुक्त और सस्ती होती है, पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दें, कारखानों और मिलों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए ताकि प्रदूषित गैसें जमीन के स्तर पर लोगों को प्रभावित न करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देनी चाहिए क्योंकि पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हवा को शुद्ध रखते हैं। तो आइए हम सब मिलकर वायु प्रदूषण कम करने में सहयोग करें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। धन्यवाद।
1: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता वायु प्रदूषण कारण प्रभाव और निवारण। वार्ताकार थे दशरथ कुमार पांडे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की और सहयोग अवधेश कुमार का था।

शैक्षिक प्रसारण में अभी हम सुन रहे थे वार्ता वायु प्रदूषण कारण प्रभाव और निवारण। वार्ताकार थे दशरथ कुमार पांडे। कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी। अब आज का शैक्षिक प्रसारण संपन्न हुआ।

आइए सुने फिल्म संगीत। पहले सुनते हैं फिल्म लकी का ये गाना, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर अंग्रेजी में समाचार और फिर हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार 1:10 पर।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट।
1: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharagwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges.
5: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
3: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president is also scheduled to visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. 7 people have died in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. 3 fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded 2 deaths. 2 deaths have been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying wreath at the war memorial, General Chauhan said it was a matter of great honor for him to superannuate with the Tri-Services Guard of Honor. Marking his transition to civilian life after over 4 decades of service, General Chauhan described his tenure satisfying and excellent. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that for the first time, Indian Hajj Mission has received 2 prestigious Labetum Awards from the Saudi Ministry of Hajj and Umrah for excellence in Hajj coordination and communication. The Ministry of Health and Family Welfare has released the National Family Health Survey 6 with the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection. The survey highlighted that institutional deliveries in India increased from 88.6% in 2019-2021 to 90.6% in 2023-24. The survey said India's total fertility rate remains at 2 and vaccines received by children aged from 12 to 23 months remains consistently high above 96%. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi and Chhattisgarh. In IPL cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, सीआरपीएफ डीजी ने कहा निर्णायक दौर में लड़ाई। राज्य में एसआईआर से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया तेज, अब तक 75% से अधिक कार्य पूरा। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड संपन्न, 11 से 21 अग्निवीरों ने राष्ट्र रक्षा के लिए शपथ। संताल परगना में डेमोग्राफी बदलाव की जांच करेगी भाजपा की हाई लेवल कमेटी, बाबूलाल मरांडी ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। और झारखंड टी20 क्रिकेट लीग के लिए थोड़ी देर बाद शुरू होगी नीलामी, 271 क्रिकेटरों पर लगेगी बोली। और अब समाचार विस्तार से। कोल्हान और सारंडा क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा पहुंचकर नक्सल विरोधी अभियानों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अभियान और रणनीति पर अधिक जानकारी दे रहे हैं चाईबासा से हमारे संवाददाता।
7: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान अब अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। चाईबासा पहुंचे सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोल्हान और सारंडा के बचे हुए नक्सली दस्तों के सफाई के लिए अब और अधिक प्रभावी और तेज प्रहार की आवश्यकता है। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी समन्वय को मजबूत करते हुए पूरे जिले को जल्द से जल्द पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने का अंतिम खाका खींचा है। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव से इस इलाके में नक्सलियों की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए चाईबासा से मैं दिलीप बैनर्जी।
6: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया में तेजी आ गई है। अब तक 75.19% मतदाताओं की मैपिंग पूरी की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद महज एक सप्ताह के भीतर 5,14,000 से अधिक मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूरा किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जो मतदाता अभी तक अनमैप्ड हैं, वे 15 जून तक अपने संबंधित बीओलो से संपर्क कर मैपिंग करा सकते हैं। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में आज 1,121 अग्निवीरों ने शानदार पासिंग आउट परेड और भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में जवानों की 24 सप्ताह की कठिन सैन्य ट्रेनिंग का प्रदर्शन दिखा। मौके पर ड्रिल और फायरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वीर जवानों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने नव दीक्षित सैनिकों के समक्ष सेना के गौरव और उनके दायित्वों को रेखांकित किया।
8: आपके कंधों पर देश की रक्षा की

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे थे अनीता सेन को, और इस बंदिश के साथ ही अब आज का हमारा उपशास्त्रीय संगीत का हमारा यह कार्यक्रम अनुरंजनी संपन्न हुई।

0: today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया, साथ ही वे

0: म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डी के शिव कुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित

0: किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIYNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराइकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम जय भारती।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: Sena.
1: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम जय भारती का ये पहला गाना, इसे हमने लिया है फिल्म धरती कहे पुकार से। आवाज है मोहम्मद रफी की।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महब।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म जिगरी दोस्त का ये गाना। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नई इमारत।

cümle garip.

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर

0: खुदगर्ज के इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेएसएससी से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। समिति ने जिला, विषय और वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तथा वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। संबंधित विभागों को आवश्यक आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देश भर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा आज कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने यह जानकारी दी। NTA के अनुसार समस्या अब दूर कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को पूरा प्रतिपूरक समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। राज्य के गेतलसूद, तेनुघाट और मैथन सहित प्रमुख जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्थान मुंबई के वैज्ञानिक डॉक्टर श्रवण कुमार शर्मा ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया है। उन्होंने जलाशयों में वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत जाल और सौर ऊर्जा चालित नावों की जानकारी ली है। मत्स्य निदेशक अमरेंद्र कुमार के अनुसार अब आधुनिक तकनीकों और मछुआरों के प्रशिक्षण से राज्य में पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मछुआरों की आजीविका में सुधार होने की प्रबल संभावना है। देश भर में जून महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश और अन्य अवसरों को मिलाकर बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य समय रहते निपटा लें। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने CCL के रामगढ़ के गिद्दीसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी नागर गोजे शुभम भाव साहेब ने बताया कि तस्करों के पास से 1 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 6 लाख रुपए है।
2: सशस्त्र बल के एफर्ट से 2 लोगों को पकड़ लिया गया, लेकिन एक भागने में सफल रहा। दोनों भी लावालौंग के रहने वाले हैं। जो भाग गया उसका नाम है सरफराज खान। सरफराज खान एक तरह से इसमें खरीदी करने के लिए आया था अफीम का। ये जो 2 लोग थे ये लोग बिक्री के लिए आए थे। अब उनके पास से जो अफीम बरामद हुआ है उसका कुल वजन था 1 किलो 113 ग्राम।
1: जामताड़ा जिले में एक ज्वेलरी व्यवसायी से लाखों रुपए मूल्य के सोना चांदी के आभूषणों की लूट की गई है। पुलिस के अनुसार फतेहपुर बाजार में हथियारबंद 5 अपराधियों ने व्यवसायी को रोककर गहनों से भरा बैग छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जामताड़ा जिले में कल देर शाम से शुरू हुए राज्य स्तरीय बालिका वर्ग खो खो प्रतियोगिता में 16 जिलों की टीम भाग ले रही है। जिला खो खो संघ के उपाध्यक्ष चंचल भंडारी ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता का आयोजन करना जामताड़ा के लिए गौरव का क्षण है।
3: जामताड़ा जिला में राज्य स्तरीय बालिका वर्ग के लिए खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो 3 दिवसीय चलना 31 मई को इसका समापन है। इसमें लगभग 16 जिला से टीम आई हुई है और हो सकता है कि और 2 टीमें शिरकत करे। गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जामताड़ा जिला को मिला।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
4: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माई गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
0: आइए सुनिए फिल्म संगीत। ये पहला गाना, इसे हमने लिया है फिल्म सिंघम से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और अजय की। बोलो को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, धुन तैयार की है अजय अतुल ने।

मोनाली ठाकुर की गायब फिल्म लुटेरा के इस गाने के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण हमारे टेली केंद्र से ही।

अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे सोहम, राणा मजुमदार और आशीष पंडित की आवाज में। इरशाद कामिल के बोलते हैं और प्रीतम का संगीत। आइए सुने अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सुर निगम और एआर रहमान की आवाज में फिल्म ताल का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और एआर रहमान का संगीत।

रांची मेलोडीज का ये अगला नगमा कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। बोलो को लिखा है महबूब ने, धुन तैयार की है इस्माइल दरबार।

इस गाने में कविता कृष्णमूर्ति और उस्ताद महबूब की आवाज है।

फिल्म संगीत रांची मेलोडीज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। क्यों हो गया ना, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

आइए सुनते हैं फिल्म तलाश का ये गाना, सोना महापात्रा की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल हैं और राम संपत का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रांची मेलोडी संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कर रही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेएसएससी से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। समिति ने जिला, विषय और वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या तथा वर्तमान रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। माना जा रहा है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया और रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। देश भर के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा आज कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने यह जानकारी दी। NTA के अनुसार समस्या अब दूर कर ली गई है और सभी अभ्यर्थियों को पूरा प्रतिपूरक समय दिया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को नुकसान न हो। सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। देश भर में जून महीने के लिए बैंकों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई है। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में त्योहारों, साप्ताहिक अवकाश

और अन्य अवसरों को मिलाकर बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक शाखाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य समय रहते निपटा लें। भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने सीसीएल के रामगढ़ के गिद्दीसी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वैभव को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। आइए सुनिए कल्याणी। प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की, प्रस्तुति स्वर सुनीता कुमारी का।

0: नमस्कार, कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूँ सुनीता। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हम देश, समाज, परिवार से जुड़ी बातें आपसे करते हैं। बहुत सारी ऐसी विषयों पर चर्चा करते हैं आपसे जो हमसे जुड़ी रहती है। बात अगर हम अपने आसपास अपने समाज की करें तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी मन में ये ख्याल आता है कि समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है। थोड़ा सा ऐसा काम हमें जरूर करना चाहिए जिससे समाज में परोपकार की भावना बढ़े, समाज को सकारात्मक दिशा मिले। एक वाक्य है, सेवा परमो धर्मा, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन शायद ही हम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो समाज के लिए या देश के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाते होंगे, क्योंकि आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हम खुद ही इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी और के लिए कुछ भी करना या सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरूरी है कि थोड़ा सा वक्त हम समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए जरूर दें, क्योंकि मानवता का पाठ हमें समाज से ही मिलता है। समाज से ही हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखते हैं जो हमारे जीवन में काम आती है। समाज सेवा हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर करुणा और प्रेम सिखाती है। साथ ही यह शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे कार्य समाज को मजबूत और समर्थ बनाते हैं। तो थोड़ी सी सहभागिता हमें भी समाज के प्रति होनी चाहिए। कहते हैं ना कि सेवा ही धर्म है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ करना, इबादत करना, प्रार्थना करना, यही पूजा है, धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। और धर्म के अलावा अगर हम थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा परोपकार औरों के प्रति हम रखते हैं तो यह धर्म से कहीं ऊंचा स्थान रखता है। सामाजिक सेवा के रूप में हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे पास वक्त है तो जिस किसी को भी हमारे आसपास थोड़ी सी भी जरूरत है हम उनकी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही हम किसी की सेवा कर सके या उसकी सहायता कर सके। मानसिक तौर पर हम उसे संबल प्रदान कर सकते हैं, उन्हें जिस चीज से समस्या है या जिस चीज की जरूरत है उसमें हाथ बटा सकते हैं। आध्यात्मिक शांति से आत्मा शांत होती है और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से मानसिक शांति मिलती है जो किसी भी धर्म से, परोपकार से ऊपर है। समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हों। छोटे छोटे बदलाव करके आप समाज की सेवा कर सकते हैं, जैसे रक्तदान करके आप सेवा कर सकते हैं। जरूरतमंदों के लिए ब्लड बैंक में आप रक्तदान करिए, वो भी समाज सेवा का ही हिस्सा है, वो भी सामाजिक धर्म है। या शिक्षा के तौर पर आप अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर आसपास आपके गरीब बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए सप्ताह में एक दिन का ही समय दे ताकि वो शिक्षित हो सके। साथ ही पर्यावरण के तौर पे भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। कभी आप किसी भूखे को भोजन कराकर देखिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। किसी जरूरतमंद की मदद कर देखिए। जब हम वास्तव में ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं तो हम भगवान से जुड़े होते हैं, लेकिन जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं ना, उस वक्त भगवान हमसे जुड़ा होता है और ये एक बेहतरीन उद्देश्य होता है हमारे जीवन का। समाज सेवा में ना कोई भेद, ना कोई स्वार्थ, कुछ नहीं होता है। समाज सेवा वह मार्ग है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और समाज को प्रेम, करुणा और एकता के सूत्र में पिरोता है। संकल्प हमें ये करना चाहिए कि हमारे हर कर्म में समाज की भलाई दिखाई पड़े, उसकी झलक दिखाई पड़े कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो थोड़ी सी सहभागिता हम और आप मिलकर भी समाज के प्रति निभाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने आसपास लोगों की मदद कर सकें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी दूसरों के लिए एक दिन ही सही जी कर देखिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको खुशी के साथ बहुत सुकून मिलेगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। समाज सेवा एक धर्म है, इसका मौका हर किसी को नहीं मिलता। भगवान ने यदि हमें इस लायक बनाया है तो हमें हर हाल में जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। समाज सेवा में आगे बढ़कर थोड़ी हिस्सेदारी जरूर निभाएं। जब हम समाज सेवा में शामिल होते हैं ना, तो हम केवल जरूरतमंदों की मदद कर रहे होते हैं, बल्कि एक अच्छे उद्देश्यों को भी पूरा कर रहे होते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका अपनापन हमारे लिए वो अनमोल धन है, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में शांति आएगी। समाज सेवा हमारी मानवता की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है और हमारे अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव है। दूसरों की सेवा करके हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस प्यार और अपनेपन के साथ थोड़ी सी भागीदारी समाज में निभाइए, देखिए आपको बहुत खुशी मिलेगी। और बातें हम कर रहे हैं समाज सेवा की, या किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होता है कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और ऐसा तब होता है, हम खुश तब रहते हैं जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब हम अपनी रूटीन, अपनी दिनचर्या जो कि कहा जाता है, उसे सही रखेंगे। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे सभी लोगों को प्रायः परेशानी हो रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी ही जानकारी देंगे जो शायद धीरे धीरे आम बनते जा रही है। 10 में से प्रायः 7 लोग आपको ऐसा कहते मिल जाएंगे कि मुझे तो फैटी लिवर की शिकायत है। आखिर फैटी लिवर होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे। फैटी लिवर और आपका लिपिड प्रोफाइल और इन सारी बातों की जानकारी हमें देंगे, हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनय कुमार और उनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल की जीवन शैली में हमारा खान पान काफी बिगड़ गया है, फास्ट फूड का सेवन हम करने लग गए हैं और ऐसे में हम फैटी लिवर के शिकार हो जा रहे हैं। जब हम फैटी लिवर के शिकार हो जाते हैं तो उसके साथ और भी बीमारियां जुड़कर चली आती है। और साथ साथ आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के बारे में कि आपका लिपिड प्रोफाइल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और हमें इस जांच से क्या पता चलता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं ऑर्किड हॉस्पिटल के डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय कुमार। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल की बदलती जीवन शैली में फैटी लिवर के बहुत मरीज शिकार हो जा रहे हैं, क्या कारण है?
2: कारण हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल है और ट्रेडिशनल फूड को छोड़ के जो सिंथेटिक फूड को अपना रहे हैं उसमें ट्रांसफैट की मात्रा बहुत रहती है। हमारा डेली वर्कआउट बहुत कम रहता है और जो कंजम्पशन है फैट का वो मैसिव है, डेट टू ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है। कोई भी स्नैक्स का पैकेट उठा के देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे पाम ऑयल यूज़ होता है। हम लोग को अपना एक फैट का इंटेक पे कंट्रोल रखने की बहुत आवश्यकता है। अब फैटी लिवर की जांच कैसे होती है? जब भी कोई व्यक्ति को कुछ पेट में दर्द होता है,

0: या भारीपन होता है तो हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कराइए। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे पता चलता है उसको ग्रेड वन या ग्रेड टू या ग्रेड थ्री फैटी लिवर है। फैटी लिवर तो जीवन शैली का एक पात्र है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। अगर फैटी लिवर को अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करें तो आने वाले समय में हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, हमको कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकता है जिसके चलते हार्ट अटैक हो सकता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप करता है जिसके चलते हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा रहते हुए भी हम टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। आज की डेट में हमारे यहाँ नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। आज के समय में हमारे यहाँ लगभग 90 से 101 मिलियन की टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, लेकिन अगर हम सजग रहें, डेली अपना लाइफस्टाइल सुधारें, वर्कआउट करें, डेली 40 मिनट्स वॉक करें, योगा करें, और अपने खान पान पे जागरूक रहें, अपना टाइम टू टाइम लिपिड प्रोफाइल कराते रहें, तो इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: लिपिड प्रोफाइल का की उपयोगिता क्या है? बहुत लोग नहीं जानते लिपिड प्रोफाइल होता क्या है। तो लिपिड प्रोफाइल एक वसा की, फैट की, शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो फैट होते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, VLDL हो गया, LDL हो गया, HDL हो गया। तो पहले इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल में VLDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है। बैड कोलेस्ट्रॉल में LDL और VLDL सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, स्पेशली LDL, जिससे कि मेजर ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट में और हार्ट अटैक होता है। अभी जो लेटेस्ट जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के अकॉर्डिंग LDL की मात्रा 70 से कम होनी चाहिए, अगर सेफ जोन में 70 से कम होनी चाहिए। VLDL की मात्रा 30 से कम होनी चाहिए। अगर हमारा VLDL LDL अगर कम है और ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल हल्की बढ़ी हुई भी है, तब भी हम इसको अपना अगर डाइट कंट्रोल रखें और फैट का इंटेक कम रखें तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड सही है, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, या टोटल कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं, वो LDL पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मिस कर जाते हैं ऑफन। और इसी के चलते लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और उसके चलते आगे उनका डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं लोग। हमारे यहाँ इसके लिए डायबिटीज़ के मरीज बढ़ते जा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, यदि कोई व्यक्ति फैटी लिवर का शिकार हो जा रहा है तो पता चलता नहीं है, ऐसा कोई सिम्टम नजर नहीं
0: नहीं
1: आता
0: होता
1: है।
0: है,
1: जी
0: किसी को भारीपन लगता है, किसी को ऑफन इंडाइजेशन होता है, कभी उसको हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर रहा है, कभी अचानक से लूज मोशन होने लगा। ये अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं जो सिम्टम्स आते हैं लोगों को। पेट का भरापन रहना, पेट लगेगा कि खाली नहीं हुआ, बॉवल मूवमेंट सही नहीं होता है, तो इस टाइप के लोगों को इस टाइप के लक्षण पहले आते हैं। और इसके अलावा शरीर में बहुत तेज़ी से जैसे लोग चलते हैं तो हँफने लगते हैं, बहुत लोगों में ऐसा भी होता है, कुछ दूर चल रहे हैं, नॉर्मल 2-3 सीढ़ी चढ़े तब भी हँफने लगते हैं, तो इस टाइप की लक्षण पहले से कुछ कुछ आते हैं लोगों में।
1: जी लक्षण दिखलाई पड़ जाते हैं फैटी लिवर के। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर से कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, चाहे वो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, कैसे अपना बचाव करें, जीवन शैली में किस प्रकार सुधार करें, कौन कौन सी खान पान से दूरियां बनाएं और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें का वो सेवन करें?
0: देखिए, ट्रेडिशनल फूड को अपनाएं, सिंथेटिक फूड से दूरी बनाएं, जितने केक पेस्ट्रीज और पिज्ज़ा बर्गर की जो प्रचलन है उसको कम करें। जैसे हम लोग घी खाते हैं, अगर शुद्ध घी अगर हम लोग मिले तो उसका सेवन बढ़ाएं, लेकिन शुद्ध घी को अगर हम लोग जला के खाते हैं, उसका पराठा बना के खाते हैं, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है। अगर उसको दाल में डाल के या चपाती पे लगा के खाएं तो दैट एक्ट्स एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल और वो HDL बढ़ाता है। तो हम लोग को फोकस करना चाहिए, जो भी हमारे फूड में फाइबर युक्त जो भी हम खाना है, जैसा अगर फल की बात करें तो जैसे सेब हो गया, आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब का हम लोग को इंटेक बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जैसे काजू है उसका इंटेक कम करना चाहिए, रेड मीट का, नॉन वेजिटेरियन फूड को थोड़ा सा कम करना चाहिए, अवॉइड करें जितना हो सकता है कि हरी सब्जियां, साग पालक ये सब का सेवन बढ़ाएं। जैसे राइस ब्रान ऑयल होता है, उसमें लीस्ट कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर छानने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, हल्के तेल होता है, उससे भी कोलेस्ट्रॉल का कम बढ़ता है हमारे शरीर में। डेली कम से कम 40 मिनट समय निकाले,

0: 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें, योगा करें, और फाइबर जैसे चना है, मूंग है, अंकुरित अनाज है, ये सब का सेवन बढ़ाएं अपने डेली खाने में।
1: जी, अपनी लाइफ स्टाइल को हमें सुधारना पड़ेगा, अपना खान पान पर हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, लिपिड प्रोफाइल जांच कराने के बाद यदि उसमें काफ़ी वेरिएशन दिखता है, काफ़ी असंतुलन दिखता है, गड़बड़े आती हैं उसमें, तो कैसे इसमें सुधार किया जाए?
0: पहले तो इसमें उनको अपना जीवन शैली को सुधारना होगा, वर्कआउट करना होगा, और अपना डाइट कंट्रोल करना होगा, फैट का इंटेक कम करना होगा, फाइबर युक्त चीज़ें हैं उनका सेवन बढ़ाना होगा। इसके अलावा दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी अभी नई दवाइयाँ आई हैं जो कि शॉर्ट पीरियड, ऐसा नहीं है लोग सोचते हैं कि नहीं एक बार हमने शुरू कर दिया तो हमको लाइफ लॉन्ग खाना है, वैसा कुछ नहीं होता है। अभी के समय बहुत सी अच्छी नई दवाइयाँ आई हैं जिसको 2-3 महीना ही खाने से आपका 3 से 4 महीना में फैटी लिवर एंड एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मलाइज कर देता है, और उसके बाद आप पूरी तरह से उसको उस दवाई को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन भर उसको खाना है, हाँ, लेकिन जीवन भर आपको नियमित व्यायाम, नियमित वर्कआउट और डाइट कंट्रोल से तो रहना ही पड़ेगा। अगर आपका ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं अनियमित जीवन शैली से ही, तो आपका नियमित जीवन शैली रहेगा। अच्छा, प्रॉपर स्लीप लेने से भी आप 6 से 7 घंटा स्लीप नहीं लेते हैं, नींद आपकी अच्छी नहीं है, तो उससे भी इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस लेवल से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है, इवन कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। तो हमें कम से कम 6 से 7 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल को ऑफ करके अगर कोशिश करें कि तो 1-2 मीटर दूर पे अपना रख दें। अगर रात में आप मोबाइल देख रहे हैं सोते समय तो फिर नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह में फ्रेश नहीं फील करेंगे, स्ट्रेस लेवल रहेगा, और उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर और कार्बोहाइड्रेट में इजाफा होता है।
1: फैटी लिवर की समस्या से ग्रसित होने के उपरांत यदि हम दवाइयाँ गोलियों का सेवन नहीं करते हैं, अपना खान पान नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे आपको इस शुगर की बीमारी की ओर ले जाता है।
0: देखिए, अगर फैटी लिवर अगर बहुत लंबे समय तक किसी के शरीर में है तो उससे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन की प्रचुर मात्रा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, रिसेप्टर मास्क पे वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो अगर फैटी लिवर को अगर हमने बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें कि अगर हम लोग इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है और फैटी लीवर है, अगर उसको उसके फैटी लीवर को हमने ठीक किया तो वो लगभग उसका डायबिटीज़ ऑलमोस्ट, अगर उसका जीवन शैली भी वो उसने अपने सुधार लिया, डेली वर्कआउट कर रहा है, डाइट कंट्रोल है, तो हमने देखा है कि उनका इवन डायबिटीज़ की दवाई भी छूट जाती है और उनका डायबिटीज़ है वो रिवर्ट हो जाता है। फैटी लीवर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं कि सोचते हैं कि नहीं इसमें क्या जरूरत है, ये तो बहुत जीवन शैली से सुधार लेंगे। जीवन शैली से सुधरता है लेकिन अगर उस पर ध्यान दे के, अगर जागरूक होकर उसको सुधारे तो आने वाले समय में उनको डायबिटीज का खतरा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हमें अपने जीभ पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और मीठी चीज़ों से भी दूरियां बनानी पड़ेगी, और जो चटपटी चीज़ें फास्ट फूड का हम सेवन करते हैं इससे भी हमें दूर होना पड़ेगा। क्या कहेंगे सुनने वाले साथियों को आप?
0: जी बिल्कुल, जैसे हमें क्या नहीं खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो जैसे आजकल कुछ भी सेलिब्रेशंस होते हैं तो आमतौर पे लोग केक्स, बर्गर, पिज्ज़ा, जो भी वेस्टर्न फूड कल्चर है उसको हम लोग ज़्यादा ज़्यादा अपना जीवन में अपनाते जा रहे हैं, उसको हम लोग को कम से कम मिनिमाइज करना चाहिए, और जितना हम लोग ट्रेडिशनल फूड अपनाएं वो ज़्यादा अच्छा है, और फाइबर युक्त चीज़ें लें, खीरा है, अभी सेब है, ये सब का सेवन बढ़ाएं, अनाज का सेवन करें अच्छा से, फाइबर युक्त अनाज जैसे रागी है, आपका बाजरा है, मूंग है, अंकुरित मूंग है, चने हैं, ये सब का सेवन बढ़ाएं। कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन खाने से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है तो उसका सेवन करें, ठीक है। पानी का भरपूर मात्रा लें, पानी कम से कम गर्मी के दिन में 4 से 5 लीटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके अनुपात में नहीं लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, उससे स्टोन का खतरा आपको हो सकता है। मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो
1: जी
0: आप अपना जीवन शैली को सुधारें और फैटी लिवर से दूर रहे, डायबिटीज़ के खतरे से बचे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय कुमार, डायबिटोलॉजिस्ट और किड हॉस्पिटल रांची, आज आप इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मित्रों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
2: फैटी लिवर और आपका लिपिड प्रोफाइल, इस विषय पे अभी आप डॉक्टर विनय कुमार से संजीव कुमार लाल की बातचीत सुन रहे थे। तो श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा वक्त हमें अपने आप को भी देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में बहुत सारे काम हैं जो करने होते हैं, करना पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखकर अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। और इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा बातें आज आपसे हमने कर ली है, तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोता, आज जीवन की बातें हो रही है, समाज की बातें हो रही है, अनुशासन की बातें हो रही हैं और मेहनत की बातें हो रही हैं, तो और एक विषय पे कुछ बातें हम आपसे और चर्चा करना चाहेंगे। अक्सर हमें जीवन में वो बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती जो हम पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और कई बार अगर हम उन चीजों को पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो बहुत

सफलता की कीमत है। कुछ नया और बड़ा हासिल करने के लिए हमें अपना वर्तमान उसी दिशा में लगाना पड़ता है जिस समय का वक्त हमारे मनोरंजन या आराम करने का होता है। अगर हम अपने मनोरंजन और आराम का ख्याल रखें, अपने सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे तो वो चीज हमें नहीं मिलेगी जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए अगर हम अपने आराम अपने सुख का त्याग करते हुए उस लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से आगे बढ़ेंगे तो हमारा लक्ष्य हमें हासिल होगा। किसी भी चीज को पाने के लिए दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का मानना बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ पाने के लिए वास्तव में कुछ खोना नहीं पड़ता बल्कि सही दिशा में कुछ करना या बदलाव करना पड़ता है। जैसे बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, द्वेष और आलस को छोड़ने से जीवन अपने आप बेहतर बन जाता है। साथ ही प्रकृति के अपने नियम हैं जिसमें शारीरिक और मानसिक संतुलन हमें बनाकर रखना पड़ता है। किसी चीज का उपयोग दूसरी चीज के लिए करना पड़ता है। यदि हम कैरियर की ऊंचाइयों में छूना चाहते हैं, हमें अपनी नींद और व्यक्तिगत समय का एक हिस्सा उसमें काम को देना पड़ेगा। साथ ही अगर हमें कोई भी ऐसी चीज चाहिए जिसका लक्ष्य हमने सोचा है तो उसके लिए हमें मेहनत और समय देना पड़ेगा, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ खोने से मतलब ये नहीं कि आपकी धन संपत्ति खो जाएगी, यहाँ खोने से मतलब ये है कि मेहनत अगर आपने नहीं की तो आपका लक्ष्य खो जाएगा, आपका भविष्य थोड़ा पीछे चला जाएगा, आप जो करना चाहते हैं जो पाना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने भौतिक सुखों का थोड़ा त्याग करना पड़ेगा तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। एक चीज खरीदने के लिए आपको दूसरी चीज का खर्च कम करना ही पड़ता है, तभी वो महंगी चीज जो आप खरीदना चाहते हैं वो आपके हिस्से आ पाएगी। किसी नई आदत को अपनाने के लिए अपनी पुरानी मान्यताओं या आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलना ही पड़ता है। यदि हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, करियर में आगे बढ़ना है तो मौज मस्ती और सोने के समय का त्याग करना पड़ेगा। कहने का सार बस इतना ही है कि किसी बड़े लक्ष्य सफलता या उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपको अपने वर्तमान के आराम बुरी आदतों या सुखों का बलिदान करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य पर आगे बढ़े और जब आपका वो लक्ष्य मिल जाएगा तो आपके पास सारी वो चीजें हो जाएंगी जो मेहनत करते वक्त आपसे शायद पीछे छूट गई हो। तो आप अपने जीवन में खुश रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपनी मंजिल को ऊंचाइयों तक लेकर जाए यही कामना हम करते हैं। आज के कल्याणी के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है संजीव कुमार लाल।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सांझ सरगम।

श्रोताओं, आप सुनेंगे सांझ सरगम। उससे पहले हम आपको बता दें आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे यानी कि 4:35 पर सांझ सरगम, इसके अंतर्गत फिल्म संगीत। 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 5:02 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा युववाणी।

5:30 पर आप सुनेंगे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक, प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। छह बजे मुख्य समाचार।

6:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। 6:32 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 7:00। 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीत के अंतर्गत हो लोकगीत, कलाकार होंगे दुखु सिंह और उनके साथी। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार। 7:45 पर समाचार ध्वनि चित्र। 8:00 रजनीगंधा के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या और न्यूज एट 9:00।

9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय युवा पत्रिका, रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, हिंदी में समाचार 11 बजे और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये थी आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, जिंदगी में शाम का महत्व केवल एक पहर का नहीं, बल्कि ये दिन की भाग दौड़ के बाद ठहराव, आत्म मूल्यांकन और परिवार के साथ जुड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। दिन भर के काम के बाद शाम का समय मन को शांत करने और तरोताजा होने का मौका देता है। जिंदगी सुख दुख, उम्मीद और चुनौतियों का एक खूबसूरत मिश्रण है। धूप छांव की तरह यह पल पल बदलती है और हमें हर अनुभव से कुछ नया सिखाती है। जिंदगी के इन्हीं रंगों को गीतों में भी बहुत खूबसूरती से पिरोया गया है। स्वागत है आप सभी का सांझ सरगम में। मैं हूं मीनाक्षी।

दिल तो पागल है, इस फिल्म का आप गाना सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। उत्तम सिंह का संगीत था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। अगला गाना है कहो ना प्यार है, फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं। राजेश रोशन का संगीत, इब्राहिम अश्क के बोल।

आप सुन रहे हैं सांझ सरगम। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं साथिया फिल्म से सोनू निगम की आवाज में। ए आर रहमान का संगीत है, बोल हैं गुलजार के।

और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश ताल फिल्म से। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं। ए आर रहमान का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल।

0: सांझ सरगम में आज इतना ही। कार्यक्रम से मीनाक्षी को दीजिए विदा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रख रखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड मुख्यालय से आज महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो नामक एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जागरूकता रथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक, प्रचार सामग्री और उद्घोषणाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। पलामू जिले से पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक राजेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची के गले से सोने का लॉकेट काट लिया था। इस दौरान ब्लेड लगने से बच्ची जख्मी भी हो गई थी। साहिबगंज जिले के बोरियो में हुए एक सड़क हादसे में आज 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर होने से यह हादसा हुआ। एक मृतक की पहचान राधानगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है, जो गुड्डा जिला पुलिस बल में पदस्थापित थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 5:02 हो रहे हैं। और अब आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे भूले बिछड़े गीत। शाम 5:30 पर सुनिएगा हमारे किसान भाइयों और बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा भिंडी की खेती। मनोरंजन की जगह हो लोकगीत से प्रेम सिंह पूर्ति और साथियों के स्वरों में आज के मेहमान के अंतर्गत। भेंटवार्ता का विषय होगा नेनुआ की खेती कैसे करें। भेंटवार्ताकार होंगे रोड़ो बुड़ियुली। वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी भी आप इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे और मनोरंजन करवाएंगे आपका एक कुरमाली लोकगीत से लालू महतो और साथियों के स्वरों में। श्रोताओं, शाम 6 बजे सुनिएगा मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। उसके बाद हमारे केंद्र से सुनिएगा बंगला कार्यक्रम 7 रंग शाम 6:02 पर। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, इसमें चर्चा का विषय होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसके अंतर्गत भेंटवार्ता का विषय होगा तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। भेंटवार्ताकार होंगे अनुप भागी, सामाजिक कार्यकर्ता चाईबासा। उसके बाद श्रोताओं, शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी रांची से। यहीं से जिले में आजकल का प्रसारण होगा शाम 7:10 पर। उसके बाद हमारे केंद्र से शाम 7:15 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद है। शाम 8 बजे सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 9 बजे और उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा रात्रि 9:15 पर। हमारे केंद्र से रात्रि 10 बजे सुनिएगा गजलों का प्रोग्राम महफिल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आरती का ये गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। जी हाँ श्रोताओं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म का नाम है मदर इंडिया।

करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

जूता पॉलिश करेगा, आह जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत।

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा,
2: लैला ओ लैला,
0: लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: हमको। दूर हो के अजी क्यों ना सताओ हमको, हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको।
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: दिल्ली का ठग, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, मुख्य आवाज थी किशोर कुमार की। और अब श्रोताओं कार्यक्रम के बाकी गाने सुनेंगे इस संदेश के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 870-001-4242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं भूले बिसरे गीत।

मधुमती फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं भूले बिसरे गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मनिगोप और
1: डोबरो बुडल तिकिन पैते जोहार।
0: आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। डोबरो जी, आपका भी हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: आबेनो आशा जी नैन चसिया कड़ा कुरुडुर इलादारम अंडो आशा जी तिसिंग अचास कड़ा यूम तन सन्नाम चास गया को इसो सिविल जोहार चासी हागा को निमितंग दो अब नामा सिर बाबा हर रिया पनाइटी को सिटर बिटा करना आशा जी तिसिंग को बोले लतना असड़ची अब लोगों मौसम को बोले लतना
0: बिल्कुल
1: सिता ते गामदिन लेका इसो पूरे जपुडतन लेका माने मी सिंगे गामा हुबान लेका नेलो तन तैकना मेंदो तालातिकिन तयम तो ने रिमिल सपयना अंडो अजुकन ओदो बुगिनो गे अटकर ओतना चास को लागि गामाओ दरकार गिया पूरे गामाओ का दरकार।
0: बिल्कुल डोगरो जी, और इसके साथ ही हमारे किसान भाई बहन धान फसल की खेती के लिए खेत की तैयारी में लग जाएंगे और लगे भी हुए हैं और कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाई बहन अलग अलग साग सब्जियों की भी खेती करते हैं। अगर हम बात करें भिंडी की खेती,

0: तो हमारे किसान भाई बहन भिंडी की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस के अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी ये सब पाए जाते हैं। भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम्न वातावरण अच्छा माना जाता है। बीज उगने के लिए 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। डोबरो जी, भिंडी को ग्रीष्मकालीन और खरीफ दोनों में उगाया जा सकता है। इसके लिए उत्तम जल निकास वाली भूमि जिसमें पानी का जो बहाव है वो पानी जमा ना रहे, ऐसी भूमि में हमारे किसान भाई बहन इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। भूमि का जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 अच्छा होता है। इसके लिए हमारे किसान भाई बहन सबसे पहले अच्छी तरह खेत की तैयारी करें। 2 से 3 बार अच्छी तरह खेत की तैयारी कर उसे भुरभुरा बनाए, फिर पाटा चलाकर समतल करें, और इसके साथ ही खेत तैयारी के बाद गोबर के खाद का इस्तेमाल करें।
1: এসো সারে কাজে চাষ আগে কো আশা মানে তে কিং কিং জায়গা বো হিন্দি হাই আমতে সারে গে মিন্ডি দিরিং নিয়ে এসো বুগিন উতু তানা নেনা জেটারিও অন্ড গামা দিন রে বো চাষ দাইয়ে নেন রে বুগিন নাসাল উন্নত কিসম রিয়া জাং কো বো চাষ দাইয়ে ইনা লাগিতে আবু গুরি উদার কো গে বো পানাইট রে বো আগু জু ইকে অন্ড ও কুন্ডি কিয়ারি কো ভাই আয়ার তে এসো বুগিরে কাতে বো সি বুসার লেকা অন্ড ও কিয়ারি বো ভাই কেতা চাষ আগে কো না তো গামা দিন তেনে দা সেন তেয়া জো বো নিকাশি বো মানে দা অতল কো বুগে লেখা বো বাইকে তে দা বো সেন এরিকে ইনলেকান নাড়গা হাসা কো বুগেন গিয়া ডিপে অতে কো বুগেন গিয়া নেন উতু সবেন মিতেন বো জমেরে এসো বুগেনে নেনা উতু তে বো জমিয়া বিপার উপার রিও বো পাইটি দাইয়ে নেনা আকারিং কে তে আবু বুগেন আমাদানি বো নাম দাইয়ে পয়সা টাকাও বুহি দাইয়ে এনলেকাতে ও আরে আবু বিতি রিয়া পে বো নাম দিয়ে আবু আর্থিক মজবুত হবা দিয়ে এনামতে নেলেকান মিন্ডি দিরিং রে চাষবাস রে মারবু লাগাতিং কেন ওখা আন্ড অনেন ইমিতেন এতে মার গামা সড়রে তীরেন তিয়া চাষবাস রে বু আচুনকে।
0: बिल्कुल डोबरू जी, और ये वर्षाकालीन भिंडी की बुआई हमारे किसान भाई बहन जून से जुलाई के मध्य कर सकते हैं। वर्षाकालीन भिंडी के लिए कतार से कतार की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर और कतारों में पौधे के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर का अंतर रखना चाहिए। भिंडी की उन्नत किस्में हैं पूसा A4, परभनी क्रांति, पंजाब 7, अर्खा अभय, अर्खा अनामिका, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, ये सब उन्नत किस्में हैं और इनकी खेती कर हमारे किसान भाई बहन अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डोबरू जी, इन सब की खेती के लिए बुआई से पहले बीज का बीजोपचार होना बहुत ही ज़रूरी है। बीज को उपचारित करके ही बुआई करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो फसलों में रोग है वो कम लगता है और पौधों का विकास है वो काफ़ी अच्छा होता है।
1: আমার চাষি আগে ওখানে যে হিতে না খাজি কাড়া এন হিতে বো জোগাড় কেতে সময় রাগে মার মিন্ডি দিন চাষবাস বরি কে।
0: ডোবরুজি, আব হাম কার্যক্রম কি ওর আগে বড়তে হ্যাঁ আর শুনতে হ্যাঁ ইয়ে সন্দেশ।
1: ইয়া
2: মৌসুম ও জলবায়ু ইয়া ইউনেস্কো কা সন্দেশ হ্যায়। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
0: किसान भाई बहनों, अब हम आनंद लेते हैं हो लोकगीत का, प्रेम सिंह पूर्ति व साथियों के स्वर में।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी, उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी, जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: फसल बीमा का,
1: हमने फसल बीमा योजना के वो अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम किसानवाणी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं नेनुआ की खेती कैसे करें। इस विषय में जानकारी दे रहे रोड़ो बूढ़ी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से

0: जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
1: किसान भाई बहनों, इसी संदेश के साथ कार्यक्रम किसानवाणी अब यहीं संपन्न होता है। अब मुझे आशामणि गोप और
2: डोबरो बुडेल तिकी पैते
1: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। राज्य में नियुक्ति परीक्षाओं में चल रहे भाषा नियमावली के मसले पर मंत्री ने कहा कि इसे विवाद कहना उचित नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ चूक हुई है। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं है, वहां उसे अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है। धनबाद में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 20 से अधिक निजी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया। इस दौरान कई अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन किया गया और उन्हें ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए। रांची विश्वविद्यालय के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 5 मई से आयोजित 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष डॉ. सुदेश साहू ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त साधन बताते हुए प्रतिभागियों को इस दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर लोहरदगा जिले में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जिलेवासियों से तंबाकू एवं तंबाकू जनित उत्पादों के सेवन से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला और धनबाद समेत 11 जिलों में कल गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। यह आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.3।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य।

0: कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। कैसे हैं श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ बातें करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर। जी हाँ, हर साल 31 मई यानी कल दुनिया भर में लाखों लोग एक ऐसे भयावह संकट को याद करने के लिए रुकते हैं जो सालाना 80 लाख से भी अधिक लोगों की जान ले लेता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं है श्रोताओं, यह इस बात को याद दिलाता है कि तंबाकू का सेवन आज भी दुनिया भर में मृत्यु के सबसे रोके जा सकने वाले कारणों में से एक है। चाहे वह हम यूं कहें कि आप धूम्रपान छोड़ने पर विचार कर रहे हों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर हों या सार्वजनिक स्वास्थ्य की परवाह करने वाले व्यक्ति हों, तंबाकू के विनाशकारी प्रभाव और इससे मुक्ति पाने के लिए आज तरीकों को समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम इस महत्वपूर्ण दिन को मना रहे होते हैं तो संदेश स्पष्ट है, तंबाकू को ना कहना, जीवन को हाँ कहना है। आइए आज हम तंबाकू छोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है, तंबाकू के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में लोग क्या कहते हैं, जानकार क्या कहते हैं, इस पर हम कुछ जानकारी लें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो श्रोताओं यह है कि कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक इसे कैसे छोड़ सकता है, इस पर हम बातें करें। लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण संदेश ले लें।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नागरिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, आज हम जानकारी लेते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे है। जानकारी दे रहे हैं अनूप बागे, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सदर अस्पताल चैबासा से। श्रोताओं, 31 मई की विशेष दिन है, जहां हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। आइए आज इस पर हम कुछ जानकारी लेते हैं। आपका पूरा नाम क्या हुआ?
2: मेरा नाम हुआ जस्टिन अनुबागे और मैं सदर अस्पताल चाईबासा में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ।
1: सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है?
2: विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल हम लोग 31 मई को मनाया जाता है और यह जो दिवस है ना केवल भारत देश में, ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि तंबाकू के सेवन से होने वाले जो दुष्परिणाम के प्रति आम जनमानस में तंबाकू के दुष्प्रभावों एवं तंबाकू के लत को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज के समाज में हम देखते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग हैं, इवन किशोर किशोरियाँ जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और जिस तरह से वो तंबाकू की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस तरह का जो दिवस आता है, ये हर साल जो आता है, हमें यही बताता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को, है ना, इससे सुरक्षित रखें।
1: लगभग सभी लोग जानते हैं कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं। तो ये तंबाकू सेवन से क्या क्या हानियाँ हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं?
2: तंबाकू सेवन से बहुत सारी बीमारियां होती है और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर हम शरीर को देखें तो सिर से लेकर पैर तक सभी भाग इससे प्रभावित होते हैं। और इसमें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। और उसमें जो प्रमुख है, बालों का झड़ना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दांतों का सड़न, जो लोग पान गुटखा खैनी खाते हैं, गुड़ाकू सेवन करते हैं, उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं फेफड़ों का कैंसर, जो लोग जितने भी धुआं वाले तंबाकू का सेवन करते हैं, जैसे आप सिगरेट या बीड़ी पी रहे हैं या गांजा सेवन कर रहे हैं, अभी के समय में लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सिगरेट का भी सेवन करते हैं, है ना, वो भी उतना ही हानिकारक है जितना कि एक नॉर्मल सिगरेट आपके शरीर के फेफड़े को नुकसान पहुँचाता है। तीसरा हमारा है दिल की बीमारी। जैसे मैंने कहा कि तंबाकू और हमारा गैर संचारी रोग, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि तंबाकू एक बहुत बड़ा जोखिम है गैर संचारी रोग होने का, और जिसमें मुख्यतः आपका कैंसर है और दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, जिसको हम लोग दिल से जुड़ी हुई बीमारियाँ कहते हैं। और जैसे मैंने कहा, आपको बताया श्रोतागण, कि कैंसर में मुँह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, है ना, पैनक्रियास की कैंसर हो सकती है, उस वक्त फेफड़े का कैंसर हो सकता है। और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में आप सोच सकते हैं कि इसमें स्ट्रोक आ सकता है, किसी को अचानक हार्ट अटैक हो सकता है, असमय मृत्यु हो सकती है, ये सारी बीमारी इससे जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इसमें और कुछ बीमारियां, जैसे पेट में अल्सर होना, ये भी एक बहुत अभी के समय बहुत कॉमन हो चुका है। देन आपको आता है बदरंग अंगुलियाँ। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से तंबाकू के संपर्क में है, है ना, वो व्यक्ति हर दिन उसके संपर्क में आता है, उसे छूता है, उसका सेवन करता है, इस कारण क्या होता है, वो चीज़ें उसके शरीर में धीरे धीरे आने लगती है और वो सब उसके शरीर में उस चीज़ें दिखती है, है ना, जिस तरह से उसको बदरंग अंगुलियाँ, इस तरह की चीज़ें उसके शरीर में पनपने लगती हैं। देन आता है आपका विकृत शुक्राणु, है ना, ये भी बहुत कॉमन आज के समय में है। आज के समय में देखा जाए तो ये बीमारी जो नपुंसकता की समस्या है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत अधिक मात्रा में स्मोकिंग करना, बीड़ी का सेवन करना या खैनी खाना, तो जिससे कारण व्यक्ति को नपुंसक बना देता है, जिस कारण उसकी फैमिली आगे नहीं बढ़ पाती है। और ये सिर्फ ना केवल

0: पुरुषों की समस्या है बल्कि महिलाओं को भी होती है। अगर कोई महिला लंबे समय से गुड़ाखू सेवन कर रही है, खैनी खा रही है या सिगरेट पी रही है, तो उसके पूरे प्रजनन प्रणाली को भी प्रभावित करता है। और अगर कोई गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे पर भी ये बहुत अधिक प्रभावित करता है, और जिसका इम्पैक्ट बहुत ही नेगेटिव होता है। एंड लास्टली जिसको मैं कहना चाहूँगा, बीमारी है गैंग्रीन, और जिसको सिंपल भाषा में या सरल भाषा में अगर बात करें तो वो है सड़ना, जिसमें पैर का सड़न होने लगता है। जो अधिक मात्रा में लोग जब लोग इस तरह के नशे की चीज़ों को, तंबाकू को सेवन करते हैं, तो ये बीमारियाँ उनको जल्द से जल्द होने लगती है। तो ये बहुत कॉमन बीमारियाँ जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा।
1: तो इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं?
0: इसकी रोकथाम के लिए कोई बड़ी चीज़ तो करनी नहीं है। एक सबसे बढ़िया एक टूल मैं कहना चाहूँगा वो है जागरूकता। जितने लोग इसके बारे में जानेंगे, लोग उतने ही इस बीमारियों के बारे में जानेंगे और लोग उससे दूर रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जानकारी ही बचाव है। अभी के समय में बहुत सारे नौजवान जो है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, अभी भी इससे वंचित हैं। वो लोग इसके बारे में नहीं जानते, या कोई जानते भी हैं तो उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी देखिएगा, सरकार की तरफ से पूरे भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और हमारे झारखंड में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, जिसमें हम लोग स्कूलों में जाके लोगों को अवेयर करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं, टीचर लोगों को अवेयर करते हैं, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको हम इसके जो गिरफ्त है, इसका जो आकर्षण है, उससे हम बचा सके। और मैं इसमें और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस साल WHO, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं, हर साल तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के दिन हम लोगों को एक थीम दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो है तंबाकू एवं निकोटिन के प्रति आकर्षण को पर्दाफाश करना, और इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा भी इस साल हम लोगों को बहुत सारे कार्य योजना दी गई है, और जिसके माध्यम से हम आम जनमानस को इसके बारे में बताएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और ये अभियान हम लोगों का 26 मई से 26 जून तक चलेगा, और जिसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे अवेयरनेस प्रोग्राम को, ग्रामीण स्तर पे जागरूकता फैलाने को। और ये केवल हमारे सदर अस्पताल के जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो केवल नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे लोग भी अपना हाथ बटाकर इस मुहिम से जुड़ेंगे।
1: अंत में हमारे जो श्रोताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे?
0: अंत में मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम लोग चाहेंगे कि अपने समाज को बेहतर बनाएं, और कोशिश करेंगे कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको इसके बीमारियों के बारे में, इसके दुष्परिणामों के बारे में बताएं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जिसके संरक्षण में बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि हर दिन अपने बच्चों को इसके प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित करें। और अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का या लड़की किसी परिवार में सेवन करते हैं तो उनको मना करें, और अगर कोई चाहते हैं कि इसके लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे सदर अस्पताल में तंबाकू निवारण केंद्र है, वहाँ आकर के हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ आकर के उनसे जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएँ सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसका वो मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर भी है, 1811-2356। मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, ये नंबर है 1811-2356। आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी सुविधाएं हैं वो आप उससे ले सकते हैं।
1: तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर, विशेष तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानकारी दे रहे थे सदर अस्पताल चैमासा के सामाजिक कार्यकर्ता अनु बागे।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गी आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा एक गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल जा तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
5: मितम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुरे में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
6: अन्य मितम दो मुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने में उड़ी उड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तमे दूर रन गई हैं तब जाए तेरे काका बुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: श्रोताओं अब आइए चलते चलते हम कुछ और जानकारी ले मिशन वात्सल्य योजना पर। जैसे कि आप जानते हैं परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या फिर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। श्रोताओं आइए जानते हैं कि कुछ फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल है क्या। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहता है तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकल पुरुष को बालिका या फिर बालक नहीं दी जा सकती है। श्रोताओं, अगर आप पश्चिम सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। एक और खास बात मैं बता दूं कि इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क कर सकते हैं या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जो जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरे तल्ले पे अवस्थित है चाईबासा में, तो आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रमेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 6:56 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्ज्वल होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर। कहा, जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं, वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं है, वहां उसे अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है।
1: हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं, तो जनजातीय भाषा वो सब कुछ स्वीकार है, लेकिन जिस जिले में मगही और भोजपुरी बोली जाती है वहाँ जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना, तो वहाँ के बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो हम लोग की मांग यही थी कि इस भाषा को शामिल किया जाए।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की गई। धनबाद में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सहायक नियोजन पदाधिकारी पद्मा कुमारी ने बताया कि रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
1: सभी सेक्टर की कंपनी है जिसमें L&T है, होंडा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिलायबल इंडस्ट्रीज है, इस तरह की कंपनीज है और इसमें मुख्य रूप से ITI ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है। झारखंड के और खासकर धनबाद की भी कंपनियां हैं और साथ साथ बाहर की भी कंपनियां हैं। तो युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को रजिस्टर करें नियोजनालय में और समय समय पे होने वाले इन एक्टिविटीज का पार्ट बने।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रख रखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड मुख्यालय से आज महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो नामक एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उपविकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल रांची के नामकुम स्थित IPH सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों और नशामुक्त समाज के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। पलामू जिले से पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक राजेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची के गले से सोने का लॉकेट काट लिया था।
2: छोटे बच्चे जो मामा के जो पीछे बैठे हुए थे, लॉकेट काटने के दौरान जो है इंजर्ड हो गए थे, पीठ के साइड में थोड़ा सा इंजरी हुआ था। इलाज के दौरान पता चला कि 10 से 12 काके लगे थे। इस चोरी का जो है उद्भेदन करते हुए सहर थाना पुलिस के द्वारा CCTV फंगा जा रही है, पहचान किया गया था सामने वालों के खिलाफ फिरोज आलम। शहर में आसपास छोटी मोटी चोरी घटना जो होगी विगत दिनों में, ये लोग उसमें शामिल किए।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, लोहरदगा, गुमला और धनबाद समेत 11 जिलों में कल गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग के वरीय वैज्ञानिक ने बताया कि इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
3: जो लगातार 2 से 3 दिनों से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है। तो हमारा अनुमान ये है कि आज भी जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
0: रांची विश्वविद्यालय के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 5 मई से आयोजित 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष डॉ. सुदेश साहू ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त साधन बताया। आईपीएल की तर्ज पर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत कर दी है। जमशेदपुर में आयोजित खिलाड़ियों की नीलामी में करीब 126 खिलाड़ी शामिल हुए। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि लीग की शुरुआत 10 जून से शुरू होगी। इस दौरान 28 मैच खेले जाएंगे।
4: हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए और खेले और नेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को दिखाएं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी देखेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका मिलेगा। तो बाहर के खिलाड़ी को, किसी भी राज्य का खिलाड़ी को हम लोग अलाउ नहीं करें, ये हमारे लोकल बच्चे के लिए है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर, कहा जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट्स के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर अल नीनो इफेक्ट को ध्यान में रखकर संयुक्त कृषि विभाग तैयारियों में जुट गया है। साहिबगंज भूमि संरक्षण विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में 52 तालाबों का जीर्णोद्धार, 99 परकुलेशन टैंक तथा 13 बोरिंग का निर्माण किया है, जिससे लगभग 2500 एकड़ भूमि सिंचित होगी। विगत 3 वर्षों में इस प्रकार कुल 300 तालाबों का जीर्णोद्धार, 500 परकुलेशन टैंक और 200 बोरिंग से लगभग 12000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। विभाग ने अल नीनो प्रभाव को देखते हुए किसानों को जल संचय के लिए खेतों में वाटर रिचार्ज पिट बनाकर जल संचय करने की अपील किया है।
2: अल नीनो इफेक्ट के चलते आने वाले समय में हाड़ की स्थिति बन रही है, इसको लेकर विभाग के स्तर से और हम लोग भी अपने स्तर से तैयारियां कर लिया है। तालाब जीर्णोद्धार हो, पॉपुलेशन टैंक हो या फिर डीप बोरिंग के माध्यम से कैसे हम लोग जल संरक्षण या जल का उपयोग कर सकते हैं। तालाब में हम लोग को लगभग 1200 एकड़ हम लोग सिंचित एरिया इस बार नया जनरेट करने वाले हैं। पॉपुलेशन टैंक में लगभग 1100 एकड़ हम लोग और बोरिंग से हम लोग लगभग 80 एकड़, तो कुल मिला के हम लोग 2500 एकड़ नया सिंचित एरिया हम लोग इस बार तैयार करेंगे। लगभग 3000 के आसपास किसान इससे लाभान्वित होने वाला है।
1: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इस वित्तीय वर्ष में कुल 35 विषयों पर 1050 लोगों का कौशल विकास कर स्वरोजगार से जोड़ने पर कार्य कर रही है। वर्तमान में साहिबगंज आरसेटी में उद्यानिकी और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस संस्थान के प्रशिक्षण का लाभ आदिम जनजाति के लोगों को भी मिल रहा है। इस हुनर को सीख कर अपने अपने क्षेत्रों में यह स्वरोजगार से भी जुड़ रहे हैं।
3: ग्रामीण परिवेश के प्रशिक्षणार्थी होते हैं के लिए संस्था चुकी है, ये संस्था है। तो इस वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ भी अभी 2 ऑनगोइंग प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है और 2 पायलट कार्यक्रम हो चुके हैं। ब्यूटी पार्लर वाला जो भी कोर्स मेरा चल रहा है उसमें आपको 35 है और हॉर्टिकल्चर वाला जो मेरे 30 है। और इस साल हम लोगों का जो अभी तक का प्रोग्राम जो दिया गया है भारत सरकार के द्वारा से अभी तक टोटल हमको 35 प्रोग्राम कराने हैं।
1: वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

0: पर्यटन विभाग साहिबगंज ने भी वन्य जीव संरक्षण और जल संचयन की दिशा में विभिन्न चेक डैम के माध्यम से पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को संचय करने पर कार्य किया है, जिसका लाभ वन्य जीवों पर्यावरण के साथ साथ स्थानीय कृषि को भी हो रहा है। वन विभाग साहिबगंज के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन पहाड़ों पर होने वाले वर्षा जल को संचित करने के लिए कुल 26 चेक डैम का निर्माण हुआ है। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया,
1: साहिबगंज के जो राजमहल पहाड़ियां हैं उनमें बारिश का पानी रुकता नहीं है और वो बहुत तेजी से गंगा नदी की तरफ बह जाता है, जिससे वन्य जीव जो रह रहे राजमहल के पहाड़ियों में उनको भी पानी की असुविधा होती है, साथ में जो ग्रामीण है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने वन भूमि के किनारे ऐसे जल स्रोतों का निर्माण किया है, पुनरुद्धार किया है, जिनसे वनों में रह रहे जीवों को भी पानी मिले, जो भूगर्भ जल है ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो भी हो, और तीसरा वहां आसपास रह रहे ग्रामीणों को भी इससे पीने का पानी मिल रहा है।
0: देश में पहली बार आज ही के दिन हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, जिसके उपलक्ष में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
2: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: ये
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 7:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त उदयपान। श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के पहले गीत से, जिसे सुनना चाहा है तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारिकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारिकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश रसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी, समस्त तड़वी परिवार। इसी गीत को सुनना चाह है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, चैतेक बिरक, मीका बिरक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। जी हाँ श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाह है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। इसी गीत के अगला खत आया है बड़ा बाम्बू गोपालपुर से संतोषी महतो, जय महतो, बड़ा बाम्बू सुपाई साई से ही इंद्रजीत तांती, मधुरानी दास और दृष्टि। इसी गीत को सुनना चाहा है सरायकेला गांव कीता से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप और माहिर गोप। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत। और अब आइए अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हमजोली, सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। न्यू कॉलोनी न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, आभी, अनीश, आमनिका, आकिंत, अमित, मानिश और मुन्ना। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी, दीन बंधु महतो। इसी गीत को सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। शादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। और कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के बाकी गाने हम सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: ही नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नगे नेहर में ना भले नुकन परिस्थिति रे भले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम भले रुड़ तो बन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोर है को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो हम बात हो जाए
8: मुकुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भूरूपा सिनाकना ऐसे दुखुर मिनाय यापा में रिय तपा में रिय वा बेटा मिका
9: अन्या मुकुम दो बुम्बई कोड़ा पटन मुकुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन मुकुम कितमई कोड़ा मिनिमल बुरी ने बागिया तो कि दुना से आरती कोलो पुलिस कोलो इन लड़ाई चलाओ तमा दुर्रम गोया तब जाय तेरे काका गुंगो उन बको को काको मेल मिया
10: अलिंग मुनि सुरेन तो ते आपिले तन अलिंग से आ जा हुरा रे मिनाय रे जिता हुरा रे मिनाय रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिटा हुरेन का अले आया न तुम ते नम आपिले तन।
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख

0: दो बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपकी पसंद में। और जो गीत श्रोताओं हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उस गीत को पसंद किया है कुचाई बिदरी से केपी सेठ सोए, दुर्गामती, सरिता, रेशमी, राजकुमारी, विशाला, मुन्ना और सनी। ग्राम सूराबेड़ा से बांसी सरदार, कमल सिंह, बीरू सरदार और अंशु। इसी गीत को सुनना चाहा है नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रवीना परवीन, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा तैमूर बाबू, नवासा हुमेरा नाज, नवासी सुमेरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख और नवासा मुजम्मिल बाबू। श्रोताओं, इसी गीत को सुनना चाहा है कोकिलवारा औराई ज़िला मुजफ्फरपुर से, मोहम्मद फैजल शेख, नुजहत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से सुनना चाहा है शुभचंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुनने ख्वाहिशमंद है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। और यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, धर्मेंद्र और जितेंद्र। श्रोताओं, आप सबने सुनना चाहा है सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म कल हो ना हो का ये गीत है।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर, और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और अब श्रोताओं, सुनते हैं आपकी पसंद का अगला गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। गीत को सुनना चाह है सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, मोहिनी मीरा मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। अमरगढ़ तहसील शादुल शहर कुलवंत मान, जी हाँ, अमरगढ़ तहसील शादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंद्र कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, हरविंद्र मान, राजा सिंह मान, कुलविंद्र कौर मान और के एस मान। इसी गीत को सुनना चाह है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सादिया शोएब खान, पोतरा मुजताबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेटरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, शुरवी देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। आपकी पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम रजनीगंधा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त उदय पान। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में फिल्म वीर जारा के गीत के साथ, जिसे सुनना चाहा है फ्रेंड्स कौर कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, ग्राम पजौनिया तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंचौलिया, आदर्शार्थक अलौकिक आराध्या चंचौलिया, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और लाडला टुक टुक, और इसी गीत को सुना चाहा है साधु शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, देव प्रकाश चौहान, बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा प्रकाश, ललित प्रधान, राजकुमार केशरी, किरण केशरी, श्यामदेव नायक और देवेंद्र जी, चकधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से बनमाली बेसरा, कोमल बेसरा, बासंती अनु, सिद्ध कुमारी और पूजा, आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रही थी लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में फिल्म वीर जारा का ये गीत। और इसके बाद आइए सुनते हैं अगला गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है यादों की बारात। सुनना चाहा है जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। बड़ा निमड़ी चायबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। इसी गीत को सुनना चाहा है आमजोड़ा पुखरिया से शिवा गोप, प्रेम गोप, संगीता शिल्पी, लिपि और दीपाली गोप। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, शुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और FM शिवा मुंडरी। आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में यादों की बारात का ये गीत है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी चाईबासा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अपने रेडियो दोस्त उदयपान के साथ। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं कुचाई ग्राम इचाहतु से गोलाराम लुवादा, लुदरी, सोमनाथ पूर्णिमा, लालमुनी, बिंजना और समस्त लुवादा परिवार। ग्राम लोसो दिकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद जीतू, साइमन महतो और समस्त महतो परिवार। रेलवे रोड गंज डुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, शेख मोहम्मद फारूक, अब्दुल सत्तार अंसारी और डीएच बच्चन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, कृष्णा वर्मा और समर फुलमाली। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में फिल्म परदेश का ये गीत।

श्रोताओं, ये था परदेश फिल्म का गीत कुमार शानू और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत के बाद आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर। इस गीत को सुनना चाहा है पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, करीना महली, कविता महली, हरसमनी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, आशा महली, नंदनी महली, संजय महली, साजीव महली, गोपाल महली, अर्जुन चक्रो बाबू, बाबुलू लोहार, राधा दीदी, संगीता रेखा, छवि दीदी से मेरा जोहार। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमेध कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारीकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारीकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेश तड़वी, बिटिया रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गोपालदास माणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली, सिंगारपुर से सालिक पुजारी और पुणे से पंकज बाडोदे, आर्या आदि, बीटी बाडोदे और चंद प्रभा बाडोदे। आइए आपकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत है।

जिसे सुनना चाहा है। सरायकला गांव गीता से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप और माहिर गोप। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृषि श्रीवास्तव। अमरपुर पेड़ा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरभि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बड़ा बाम्बू गोपालपुर से संतोषी महतो, जय महतो, बड़ा बाम्बू सिपाही साई से इंद्रजीत नाती, मधुरानी दास और दृष्टि। न्यू कॉलोनी निमडी चायबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू खुशी, आभी अनिश, आमनिका, अंकित, अमित, मनीष और मुन्ना। एक और फरमाइश आई है चांडिल ग्राम राहुड़ी से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमिहिनी, मनमहिनी, दीनबंधु महतो। और इस गीत को सुनना चाहा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं बप्पी लहरी की आवाज़ में फिल्म डिस्को डांसर का ये गीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। सुनने ख्वाहिशमंद है धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबी है। नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। छोटा निमड़ी चाईबासा से बाबू राम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार। अमला टोला चाईबासा से गुरु प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिल पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता और समस्त बत्ता परिवार। इसी गीत को सुना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नशीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजताबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कलाकार का ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 8:44 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई

0: दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकील के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना

0: को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे।

मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecasts thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbha tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open, and in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मी। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीराला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा-अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डीके शिवकुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डीके शिवकुमार को वजीराला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया कि डीके शिवकुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मजकूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बर वक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतालिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हमराबताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है।

0: 1600 ज्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं। मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बरवक्त और सही रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राअत की वजारत ने जोर देकर कहा है कि कीमियावी खाद के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करना इस मुहिम का असल मकसद है। किसानों को खाद के मुतवाजन इस्तेमाल और मिट्टी की जांच की बुनियाद पर दीगर ज़रूरी सामान को इस्तेमाल में लाने, माहौल के लिए साजगार खाद, नामियाती और हयातियाती अशिया के इस्तेमाल को फरोग देने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DT न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। अमली अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मसनूई जहानत AI पर मबनी CP ग्राम्स वॉयस चैटबोर्ड समाधान दीदी का आगाज किया। इसे भाषिनी के इश्तराक से इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के महकमे ने तैयार किया है। इस चैटबोर्ड के तवसुत से लोग गुफ्तगु के जरिए अवामी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को शिकायत के इजाले से मुतालिक सरकार के निजाम को सभी के लिए दस्तयाब कराने की समत एक अहम कदम करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि समाधान दीदी सरदस्त सभी 22 शेड्यूल्ड भारतीय जबानों में काम करेगा और इसमें मजीद इलाकाई और मकामी जबानें शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की पहली तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज़े खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और IT महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया, जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूने मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
3: मेटल्स में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का, आज की बड़ी मशीनों में सब जगह परमानेंट मैग्नेट्स और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दे इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहां तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो

0: हम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहता है। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी की 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका है लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली है। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। विवाह, निशा, निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहां का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही

0: चमत्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला। मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर के चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनके रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है। बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जिविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा। सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस नहीं है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ही इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
4: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
3: अच्छा।
4: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
3: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहाँ पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं। कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
4: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती है आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
3: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
5: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजी जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जिस पर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
3: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
5: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
2: देखो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
5: लोपर गामिनी।
2: हाँ। और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
5: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है, हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
4: मैं मुझे लिखने का बहुत

0: पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहले टेम्पल विजिट था वो म्यूजिक, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़े। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
1: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना, सही में बहुत डाइवर्स है।
3: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत मजेदार होते हैं।
3: हाँ, एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, वो ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले हमें उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
3: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज, मतलब जैसे ट्राइपॉड,
0: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
3: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है। हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी वो बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट, एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर के जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है, और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्व रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मींस बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है, जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पर ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
3: जी,
4: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
3: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें तो?
4: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है गज़लों का प्रोग्राम महफिल। गज़लों के प्रोग्राम महफिल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह द्वारा गाई इस गज़ल से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गज़लों का प्रोग्राम महफिल, और भाई सुनते हैं अगली गज़ल फ़नकारा मिताली सिंह और फ़नकार भूपिंदर सिंह की आवाज़ों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं गजलों का प्रोग्राम महफिल। और भाई सुनते हैं अगली गजल फनकारा चित्रा सिंह और फनकार जगजीत सिंह की आवाज़ों में।

कार्यक्रम सुरों के रंग का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, फिल्म का नाम था आंधी। और अब आइए सुनते हैं अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

श्रोताओं, ये था लता मंगेशकर की आवाज़ में रजनीगंधा फिल्म का गीत। अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में एक फिल्म किस्मत का ये गीत है।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम था किस्मत। अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, आइए सुनते हैं। फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ। और अब श्रोताओं, जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो गीत हमने लिया है फिल्म बाजार से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और तलत अजीज ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।